विक्रम संवत 2082 शालिवाहन शके 1948 आज बुधवार अश्विन शुद्ध चतुर्थी अर्थात 14 ऑक्टोबर 2026।

लीम कीलकम् मम सर्वाभीष्ट सिद्धर्थे जपे विनियोगः। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि वा ध्यानम न न्यासो न वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयं निरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम श्रूं श्रूं श्रूं शं फट् ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल उज्ज्वल प्रज्वल ह्रीं ह्रीं क्लीं स्त्रावय स्त्रावय शापन्नाशय नाशय श्रीं श्रीं जुं सः स्त्रावय आदय स्वाहा। ओम श्लीं हूं क्लीं ग्लां जुं सः ज्वलो ज्वल मंत्रं प्रबल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपायै नमस्ते मधुमर्दिनी नमस्ते कैटभनाशिन्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभ अंत्रे च निशुंभा सुरसूदिनी नमस्ते जाग्रते देवी जपे सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपिण्ये रींकारी प्रतिपालिका क्लीं काली काल रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड रूपा च ऐंकारी वरदायिनी विच्चेत्व भयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी।

दुरां विमर्दय विमर्दय रीं क्षां क्षीं स्त्रीं जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय जंभय जंभय दीपय दीपय मोचय मोचय हूं फट जां वौषट ऐं ह्रीं क्लीं रंजय रंजय संजय संजय गुंजय गुंजय बंधय बंधय ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे संकुच संचल त्रोटय त्रोटय म्लीं स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा म्लां म्लीं लूं मूल विस्तीर्णा कुंजिका स्तोत्र हेतवे अभक्तायन दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती विहीना कुंजिका देव्या यस्तु सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रुदितं यथा श्रीडामरतंत्रे ईश्वर पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम्।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी के आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

विक्रम संवत 2082 शालिवाहन शके 1948 आज बुधवार अश्विन शुद्ध चतुर्थी अर्थात 14 ऑक्टोबर 2026।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

विदुरां विमर्दय विमर्दय रीं क्षां क्षीं स्त्रीं जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय जम्भय जम्भय दीपय दीपय मोचय मोचय हूं फट जां वौषट ऐं ह्रीं क्लीं रंजय रंजय संजय संजय गुंजय गुंजय बंधय बंधय ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे संकुच संचल त्रोटय त्रोटय म्लीं स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा म्लां म्लीं लूं मूल विस्तीर्णा कुंजिका स्तोत्र हेतवे अभक्तायन दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती विहीना कुंजिका देव्या यस्तु सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रुदितं यथा श्रीडामरतंत्रे ईश्वर पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम्।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आप सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी के आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।